केचि न्यायोजना थोनी ज्याजा खा छिगु तजलजी जिसन दशिन का न्यायोजना को तिथि नख चकय जानकारी अरे नख चकय उद्देश्य नख चकय मसिका थजे गुए तिथि थन समसमय विषय वस्तु बगे केन्द्र जिया न्यायोने को ज्याजा खा छिगु तजलजी अले थ ज्याजा थने फोन इन कथन न्यायोजना अले फोन पाकिन छिगु सन थन थगु नो ख त्यादि पई सुना करेन्ट इश्यू सुना समसमय विषय वस्तु पके छि खना जंगु विकृति विसंगति थयगु खय चाहिँ छिगु सन फोनिना थौ नुवा खन्ति आदि फै 536-7279-536-803 थोल्याखे फोनेन दिसा थौ नुवा खन निर्धक करन दिसा इना पेन्चन अले थौकने एन्या पुनिया लस्ता एकक पिन्दतान दिसा चाहिँ थौ ज्याजपके न्याउने दक्षिण नपा जि छिकु त यंग देना थना जि बाजे आजु पिन्स थौ भाव दुगु मे सुलिन सकिया सदु अथे ले चिनामी व चोसा खन्ति स्वयंपुरा सके आइ त थमे बकियोनी।

हेलो जुजुल्पा जुजुल्पा जुजुल्पा थैले ज्याजो नेवा दबु नेन तलस नदीमा छित दुङ्गा निसे हनुमान नम लसु सही वादन जी राजेन्द्र डंगोले थोना पासद दु प्राविधिक रूपमा ग्वालिन सादिगु मा दिमा थना जेराम जी अथे ज्याजो खथौ छिगु तजलो जी जी सक्षा स्वस्थ व समृद्ध जीवन मयाकनीमा लपु अशान्ति सुयुना जीवने मयमा नेफुका अफुका जीवन नेजा फेमा थय मन्त्र थय ज्याजो

0: रेडियो एनआरएम 99.1 मा यो हो रमाइलो गीत
1: हे पारी पाखा पहेले छ तिल फुल की तोरी
2: तिल हो की तोरी हो क्या मतलब
1: हे।

एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ्स गुड